0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1: अर्ज किया है,
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
2: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत